मस्त कलाहिए कूड़ा लाल छड़िया रिक मन नख ते आई है फालती हो पाई जे ही कर कमाए जे हो प्रेमी का तक ना दे पाए मत

अमृत शाड बिखै बिख खाही माया मो परम पै पुले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत

एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई जब लो नहीं पागल लारे उदय तब लो प्रमते फिरते बोतायो कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कब हो मिट है नहीं रे पछतायो।

तुद डिठी सची पात शाह मल जन्म जन्म दी कटिए सजन सचा पात शाह सिर शाह दे शाहो जिस पास बैठिया सोई है सबना दा विसा।

नानका जिन नाम मिलिया कर्म हुआ तुर कदे सब पाइन आपे नजर करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरुप्रसाद कबीर जेह मार्ग पंडित गए पाछै परिबहीर एक औकाट काटी राम की तेह चढ़ रहो कबीर एक औकाट काटी राम की तेह चढ़

पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी।

काया कोट अपार है मिलना संजोगी, काया अंदर आप वास रहया आपे रस भोगी, आप अतीत आलिप्त है निर्जोग अर जोगी, जो तिस पावे सो करे हर करे सोगी,

जो तिस पावे सो करे अर करे सोगी। हर गुरमुख नाम त्याई लह जाए वे जोगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत

तू ठाकुर तुम पहरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारग तेरे, तुम्हारी कृपा मैं सुख नेरे। कोई ना जाने तुमरा अंत, उचे ते उच

राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौन दयावे ताए सब थाई वे सहाय दसवें बादशाह

पौड़ी काया कोट अपार है मिरण संजोगी काया अंदर वा आप वस रहा आपे रस भोगी आप अतीत आलिप्त है निर्जोग अर जोगी।

करे हर करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आइए लह जाए वे जोगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपहो निरवैर अकाल मूरत

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाव पाई, हमरी क्रोहाद्य रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबय तुम काबो हो, आभा दे मोहे बचाव हो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, साबैरन को आय संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिखो मार तारिये, चुन चुन शत्र हमारे मारिये। आवाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा। राख ले ओ मुहे राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंदुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जौन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जौन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा। जौन काल सब जगत बनायो, देव दें दक्षण उपजायो। आद्यंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को शिवगण सब दियो, शत्रण को पलम वध कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दिष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पड़ पड़ की जाने। जाब उदकर्क करा कर तारा, प्रजात हर तव देह अपारा। जब आकर्क कर तुहू कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप आपनी बूझे उचारे। तुम सब ही ते रहते नरालम, जान तो बेद पेद और आलम। रंकार निर्विकार निर्लंब, आदे अनिर्य नादे संब। ताका मूढ़ उचारत पिता, जाको भेव न पावत बिदा। ताको कृपाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, रंकार का चीनत नह पिव। आब आपनी बुध है जेती, बरनत पिन पिन तो है तेती। तुमरा लखा न जहे पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूपे अनूपस रूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा। अंड जेर से तजकीनी, उतपुज खान बोहर रच दीनी। कौ फूल राजा हवै बैठा,
कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आजुगा स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो बार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता, जे आस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवाए मरे, पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को इक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जहे न हरियो, ताकि ताप तिनक मैं हरहो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शहा शवै सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसती ताहे ओबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, धारिद दुष्ट दोख तेरा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी, सरठो मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी, सर्वठ मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, सवैया पाई गहे, जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं अन्यो, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक हैं मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सभाए, बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो, श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो ही बखने दोहरा, सगल द्वार को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार, बहिंग की लाज अस गोविंदास तोहार।

यस गोविंदास्तोहा रामकली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सीती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां शब्दो ता गावो हरि केरा मान जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब में सारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सवना गलना समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्यों नाही घर तेरा करता तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन न वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैना भुखा सब गवाइया करशा सुख मन है वसया जैना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे करा जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तैस कहोआ तित घर अन्न हद बाजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर उरे

मंदामणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावै जे को पंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिए

हम में ममता मोहिनी मन मुखानो गई खाए जो मोह दूजे चित लाएंदे तेना व्याप रही लपटाए हम में ममता मोहिनी मन मुखानो गई खाए।

हे गुर के शब्द पर जल लिए ता एह बिचों जाए तन मन हो वे उज्जला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन अर नाम है गुरमुख पाया जाए। महला तीजा एह मन के तड़या जुग पर मिया थिर रहे न आवे जाए हर पाण ता परमायन कर पर पंच खेल उपाए।

रहा आपे रस भोगी आप अतीत अलिपत है निरजोग हर जोगी ज्योतिष भावे सो करे हर करे सो होगी।

मत है निर्जोग हर जोगी ज्योतिष पावे सो करे हर करे सोहोगी हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी।

जोत जग मंडल करो, जह कह तह परपूर, शब्द दीपक दीपायो, जह सिख संग रहे हो, तत हर

जन्म जन्म पाशरन तो जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपुरा पाय।

सेवक के परपूर जुग जुग वहा गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्ण सिरे ते अगनत तिनको मोह पया मन मद का 84 लख जून उपाई रिजक दिया सब हूं को तद का सेवक के परपूर जुग जुग वाहा गुरु तेरा सब सदका समर्थ गुरु सिर हथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निसबासर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पन दास आस जगत्र गुरु की पार्स पेट पर्स करयो रामदास गुरु हर सत कियो समर्थ गुरु सिर हथ तरयो।

जग और नया हे महातम मैं, अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए।

सिमरंग सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुरमत मल नासी। सतगुर चरण कवल रिद धारं, गुर अर्जुन गुण सहज विचारं। गुर रामदास कर कियो प्रगासा,

बिनत करूं अरदास, सुनो जय ठाकुर पावे। देहो दर्श मन चाओ, भगत एह मन ठहरावे। बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी इक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर

कर्म लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरौले थल वरौले बहुत अनंत लाटू माधाणियान गाह पंखिया पौदी पंखी पौदिया लैन साह सुए चढ़ भई अजंत नानक पौदिया गंत नांत मंदन मंद भाए सोए पया किरत नच सब कोय नच नच हस।